बदलाव के साथ आप अनिद्रा या नींद ना आने की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए अगर अच्छी नींद चाहते हैं तो इन्हें रूटीन का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करने के लिए पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो नींद उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लेना। नींद हमारे मन और शरीर के उपचार के साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ की माने तो नींद सबसे अच्छा मेडिटेशन है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप एक बेहतर और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार कैसे कर सकते हैं और कैसे एक बेहतर और अच्छी नींद ले सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक कहते हैं, अपने दैनिक जीवन में हम रोजाना ऐसे कई काम करते हैं जो हमारी नींद में खलल का कारण बनते हैं, और बेहतर नींद के लिए आपको इनसे बचने की जरूरत है। नींद शक्तिशाली है, जादुई है, उपचारात्मक है और डिटॉक्सिफाइंग है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस सब के अलावा भी नींद के बहुत लाभ है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप एक गहरी और पर्याप्त नींद लेते हैं। परेशान, हल्की और अनुचित नींद आपके उपचार में देरी का कारण बन सकती है। यह आपको फोकस और आपकी कार्यक्षमता को कम कर सकती है। सिर्फ उतना ही नहीं, नींद की कमी आपके पाचन में गड़बड़ कर सकती है, जिसे आप ज्यादा चिंतित महसूस कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको कम आराम का अनुभव हो सकता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी नींद का ध्यान रखें, क्योंकि यह निश्चित रूप से हमारी अधिकांश समस्याओं का समाधान कर सकती है। एक्सपर्ट्स की मानो तो नींद में खलल का कारण कई बार हमारी खुद की गलतियां होती है, जिसे हम पहचान नहीं पाते और धीरे धीरे वह आदत बन जाती है और यह आदत एक दिन बीमारी का रूप ले लेती है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी आदतों को बदले और खुद को सेहतमंद बनाने की ओर एक कदम उठाए। यहाँ हम आपको एक्सपर्ट्स द्वारा बताए कुछ उन खराब आदतों के बारे में बता रहे हैं जिसे हम जाने अनजाने जरूर करते हैं। इन बातों को जानने के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप इसमें सुधार कर और अच्छी नींद पाने की कोशिश करेंगे। कैफीन का सेवन सीमित करें। कॉफी में कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और जो लोग इसका सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, यह उन्हें नुकसान ही पहुंचाती है। ये बात सही है कि कॉफीन मूड को बेहतर करती है, मगर अत्यधिक मात्रा हानिकारक भी है। दोपहर के बाद कॉफी आपके नींद में खलल डाल सकती है, इसीलिए यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफी के आदि है तो आपको अपने कॉफी और चाय के सेवन को सीमित करने की जरूरत है। एक्सरसाइज शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है। एक्सरसाइज हमेशा सुबह के समय करना ज्यादा फायदेमंद होता है। हालांकि हल्के व्यायाम आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन हैवी वर्कआउट करना सही नहीं है। दरअसल शाम का समय हमारे लिए आराम करने के लिए है। शाम के समय भारी व्यायाम से अनिद्रा और नींद की अन्य समस्याएं हो सकती है, क्योंकि व्यायाम हमें जागरूक और ऊर्जावान महसूस कराता है। अधिक ऊर्जा शारीरिक और मानसिक रूप से हमें अधिक सक्रिय बनाती है, जिससे हमारे मस्तिष्क को सोते समय बंद करना मुश्किल हो जाता है। भोजन हमेशा समय से करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने का भी एक समय निर्धारित होता है। जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनुसार हमारा शरीर नहीं करता है, इसे आप बायोलॉजिकल क्लॉक भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से सुबह ब्रेकफास्ट और लंच टाइम से करना चाहिए, उसी तरह डिनर भी समय पर करना चाहिए, क्योंकि इस पर हमारी नींद की क्वालिटी निर्भर करती है। सूर्यास्त के बाद हमारी पाचन अग्नि तेज नहीं होती, इसीलिए रात के खाने के लिए कुछ हल्की और सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के एक दो घंटे के भीतर भोजन करना सबसे अच्छा है। आजकल लोग सोने जाने से पहले ज्यादा समय अपने फोन पर बिताते हैं, जो कि बहुत हानिकारक है। इससे न सिर्फ हमारी नींद खराब होती है, बल्कि पूरा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसीलिए सोने से एक घंटे पहले गैजेट्स का इस्तेमाल से बचना सबसे अच्छा है। जो पूरे दिन लगातार काम करने के बाद आपके दिमाग को आराम करने में मदद करता है, ऐसा करने पर निश्चित रूप से आपकी नींद की गुणवत्ता सुधरेगी। सुबह की धूप हमें विटामिन डी देता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, साथ ही नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। सुबह या शाम के समय थोड़ी धूप लेना आपको सोते समय बेहतर नींद लेने में मदद करता है। ये आपके शरीर के
दैनिक सिरकाडिया

रिदम को सेट करने में आपकी मदद करके ऐसा करता है। तो ऐसे में धूप में थोड़ा समय जरूर बिताएं। वेल डियर फ्रेंड्स, आई हैव गिवन ऑल इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। प्लीज फॉलो अ रूटीन एंड एक्सक्लूड बैड हैबिट्स। विद दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, दिस इज योर आरजे चेतन साइनिंग ऑफ। बाय दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: तलत अजीज की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे, इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4

0: बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

दीवाना एल्बम से ये गीत सोनू निगम की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का संगीत। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।

0: और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी हैं सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

0: भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। नशे मन एल्बम का नाम, कासिम कुरैशी ने इसे लिखा, संगीत भूपिंदर सिंह का।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर के स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

पंकज उदास की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे मुस्कान एल्बम से, उन्हीं का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत दूसरा आदमी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत। आज यादों की महफिल में वो गीत जो कहीं न कहीं संबंधित है आंखों से, नजरों से, नैनों से।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आरडी बर्मन की तर्ज थी। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे सीआईडी फिल्म से। जान निसार अख्तर ने इसे लिखा।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे खा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल विविध भारती से।

0: येसुदास की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे सुनैना फिल्म से। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और उन्हीं का संगीत।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितम्बर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: चांदनी चौक टू चाइना, ये था फिल्म का नाम। शंकर महादेवन श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रजत अरोड़ा ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: शंकर महादेवन की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे लक बाय चांस फिल्म का नाम। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं।

अमित त्रिवेदी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे अंधाधुन फिल्म का नाम जयदीप साहनी ने इसे लिखा अमित त्रिवेदी का संगीत। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर और मैं आज सफर में आपके साथ हूं अनुराधा उपाध्याय। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, जिनमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो ये पोस्ट इबारत हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं और आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं, प्यार भरे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से शब्द आपने चुने हैं, कौन से गीतों की लिस्ट बनाई है और वो गीत हमारे लिस्ट से मैच करते हैं कि नहीं मैच करते हैं। और साथ ही अगर नहीं भी मेल खाते तो भी आप वहां पर अपने पसंदीदा गीत इन शब्दों से चुने हुए लिख सकते हैं, हो सकता है हम इस प्रोग्राम में उन्हें शामिल कर लें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की बिना देरी के, लेकिन एक बार इबारत फिर से पढ़ देते हैं ताकि जिन लोगों ने लेट ट्यून इन किया है, हमारे साथ लेट जुड़े हैं, वो भी अपने संदेश हम तक पहुंचा सके। इबारत कुछ इस प्रकार है, तुम्हारे लिए इन पलकों पर मैंने ख्वाब शाम से सजाए हैं, मेरे मन को छूकर तुमने अरमान जगाए हैं, खिले गुंजे हवाओं में खुशबू सी है, गा रही ये जमीन मौसम के इशारे हैं, सोचती हूँ कह दूं या चुप रहूं, दिल की बात जुबां तक लाऊं या नहीं, तुम सामने हो तो लगता है इससे खूबसूरत कोई पल है ही नहीं, तुम मुस्कुराता हुआ चांद मेरा, मेरी एक मुस्कान के आगे, तेरी एक मुस्कान के आगे फीका लगे ये संसार सारा। जी हाँ, ये थी इबारत। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की इस गीत के साथ। साथ ही साथ आपके संदेश हम तक पहुंच गए हैं, वो हम लेते हैं इस गीत के बाद।

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लहू के दुरंग फिल्म का नाम, फारूक कैसर ने इसे लिखा और बप्पी लहरी का संगीत, और मुस्कुराते हुए हमने आज के इस प्रोग्राम का आगाज किया। आपके संदेश भी मुझ तक पहुंच चुके हैं और खास

कर इस मुस्कुराते हुए गीत के लिए बहुत से मैसेजेस आए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीले सफर में महबूब और महबूबा की बातें होंगी, जहां एक दूसरे का बखान करते नहीं थकते हैं। उनके चेहरे पर वो दिलकशी है कि एक मिनट भी वे एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और एक दूसरे को निहारते हुए गुफ्तगू करते हैं। इसी बारे में कुछ कहा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत इबारत है और इसमें प्रेमी मन की उस उधेड़बुन और समर्पण को दर्शाया गया है, जहां एक तरफ आंखों में सजे ख्वाब और दिल में जगते अरमान है, तो दूसरी तरफ ये संकोच भी है कि दिल की बात जुबां पर लाऊं या नहीं। हमारी श्रोता कहती है कि ये जो प्यार का एहसास है, उसे महसूस करते हुए उस सुंदर पल की याद में वो खो गई हैं और प्यारी सी मुस्कान के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। बिल्कुल। एक और श्रोता कहते हैं कि इससे खूबसूरत पल और कोई हो ही नहीं सकता कि मुस्कुराते हुए चांद को सामने देखना। अब वो चांद आसमान में है या फिर आपके सामने बैठा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में कुछ ऐसा ही मीठी सी मोहब्बत और खूबसूरत एहसासों से भरा हुआ है, कुछ ऐसा लगता है जहां पर ख्वाब भी हैं जो ख्वाब जगा देते हैं। जी हाँ, एक श्रोता ने कुछ बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखकर भेजी है कि पलकों पर कुछ शामें ठहरी थी, उनमें तुम्हारे आने की खुशबू थी, तुम आए तो हवा ने धीरे से करवट ली और मौसम ने जैसे कोई राज कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारे से संदेश के लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये कविता रूपी इबारत जो है प्रेम के आरंभिक एहसास, मौन आकर्षण और प्रियतम के प्रति संपूर्ण समर्पण की कोमल अभिव्यक्ति है। और उन्होंने बहुत से गीत भी लिखे हैं जो उन्हें लगता है कि ये जरूर आज प्ले होंगे। देखते हैं। तो आप लोग समझ तो गए होंगे कि आज की ये जो इबारत है, इसमें कहीं ना कहीं मुस्कान, मुस्कुराहट और किसी की खुशबू है। जी हाँ, और हम किसी और की मुस्कुराहट के पीछे तो मरते ही हैं, लेकिन साथ ही ये भी है कि आपका अपना चेहरा जो मुस्कुराता है, खिलता है, वो हर किसी को अच्छा लगता है। तो क्यों ना इसके बारे में बात की जाए कि ये जो हंसता मुस्कुराता चेहरा है, वो जो मन को लुभाता है, उसके लिए आप क्या करते हैं? अपने मुस्कान के लिए, अपने चेहरे के लिए क्या करते हैं इस खुशी को बरकरार रखने के लिए? मुझसे साझा कीजिए अपने संदेश और बहुत अच्छा लगेगा उन संदेशों को पढ़कर। फिलहाल चलते हैं अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हरजाई फिल्म से, निदा फासली ने इसे लिखा और आरडी बर्मन का संगीत। प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं, उनमें से एक संदेश जो है हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनकी धर्मपत्नी ने कहा सुबह उनसे कि आपके लिए इन पलकों पर मैंने ख्वाब सजाए हैं, कल शाम से सजाए हैं, और उन्होंने पूछा क्यों, तो जवाब आया कि गणपति बप्पा आने वाले हैं, पधारने वाले हैं, तो उसकी तैयारी करनी है, और ये अपनी अदरक इलायची वाली चाय का आनंद लेते हुए, साथ ही थोड़ा बहुत साफ सफाई का कार्यक्रम जारी रखते हुए इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्यार और विश्वास जीवन में बना रहना चाहिए ताकि मिठास बनी रहे, जिसके आने के एहसास से ही मन में उमंगे उठने लगे, मन प्रफुल्लित हो जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, हवाओं में घुली खुशबू, खिलती गलियां और मुस्कुराता मौसम सब तुम्हारे आने का ही इशारा है। तुम मेरा वो चमकता चांद हो जिसकी एक मुस्कान के आगे ये पूरा संसार फीका लगता है। अरे वाह, आपने तो एक इबारत, नई इबारत ही लिख दी इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए, बहुत खूब। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सकारात्मक सोच रखते हैं जिससे मन खुश होता है और फिर अपने आप ही चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट छाई रहती है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो वो चेहरे पर भी दिखती है और हमारे लिए तन मन दोनों तरीके से बहुत अच्छी होती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुरा

आता और प्यार से भरा चेहरा केवल शारीरिक सुंदरता का प्रतीक नहीं होता, बल्कि ये इंसान के भीतरी सौंदर्य, करुणा और ऊर्जा का आईना होता है। साहित्य में चेहरे की मुस्कान और आंखों में छिपे प्यार को ईश्वर का सबसे खूबसूरत वरदान माना गया है, जो बिना कुछ बोले भी सामने वाले का दिल जीत लेता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराता हुआ और प्यार से भरा चेहरा एक ऐसा शस्त्र है जो नफरत की आंधियों को शांत कर सकता है। ये इंसानियत की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है और आज के तनावपूर्ण युग में जहां हर कोई किसी न किसी दौड़ में व्यस्त है, ऐसे में चेहरा ईश्वर के साक्षात आशीर्वाद की तरह है जो हमें ये याद दिलाता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य प्रेम और आनंद ही है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश ये, और साथ ही साथ सकारात्मक सोच तो है ही जो हम अपने आप को खुश करने के लिए रखते हैं, स्वस्थ रखने के लिए रखते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आपको पसंद आती है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। या समझो कि हम कई बार कुछ अच्छा गाना सुन रहे होते हैं, वो गाना सुनते सुनते कहीं ना कहीं होठों पर खिली मुस्कान एकदम आंखों की चमक बन जाती है। तो ऐसी कोई बातें, या हाल फिलहाल आप कहीं घूम के आए हों जिसने आपको रिफ्रेश कर दिया हो, इस तरह के अनुभव भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। फिलहाल आपको सुनवाती हूं ये अगला गीत, और साथ ही साथ इस गीत के अभिनेता, यानी कि ये गीत कौन से अभिनेता पर फिल्माया गया है ये भी मुझे बताएं।

तराना फिल्म से ये गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। रविंद्र रावल ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत। सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि ये कौन से अभिनेता पे फिल्माया गया है, जी हाँ बिल्कुल, मिथुन चक्रवर्ती पर ये फिल्माया गया है और बहुत से सही जवाब हमें मिले हैं। साथ ही आपके संदेश मिले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि छह गीतों की इबारत में से चौथे नंबर पर लिखा ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें अच्छा लग रहा है। जी हाँ, धन्यवाद। गुंजे लगे हैं कहने, ये गीत बहुत ही प्यारा है, हमने सोचा था लिखेंगे पर भूल गए। कोई बात नहीं, ये गीत शामिल हो चुका है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में किसी भी वजह से चेहरे पर मुस्कान आए, दिल को सुकून मिले और रिश्तों में प्यार बना रहे। नफरतें तो बहुत है दुनिया में, हम क्यों ना थोड़ा सा प्यार बांटें। जी हाँ बिल्कुल।

0: साथी श्रोता लिखते हैं कि दिल की बात कहें या ना कहें, ये हमेशा एक असमंजस छाया रहता है, क्योंकि कहने से कई बार रिश्ते खराब भी हो जाते हैं और कहने से कई बार वो रिश्ते पार भी हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन शब्दों का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे में। और आप किन से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सब सोचते हुए उसके बाद अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि शब्द एक बार कहे जाए तो फिर वापस नहीं लिए जाते हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिख के भेजी है कि तुम्हारे साथ बारिश में भीग जाने का ख्वाब कब से मन में है, तुम समझ सको तो मेरे मौन को समझ लो, तुम्हारी हथेली पर ठहरी बूंदों में से कोई अनकही कहानी पढ़ूं और तुम मेरे मौन को बिना कहे समझ लो। जी हाँ, ये चंद पंक्तियां मैंने पढ़ी है क्योंकि ये एक तरह की इबारत ही लिख डाली है इन्होंने, और मैं चाहूंगी आप अपने अनुभव साझा करें क्योंकि वो अनुभव पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा अच्छा लगेगा सबको जानकर। आप सुन रहे हैं मेरे साथ सुरीला सफर।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग।

अमित कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे तेरी कसम फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आरडी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चेहरे पर मुस्कान आती है गीत संगीत से और एक शांति और सुकून मिलता है उन्हें अपने पसंद के गीत सुनकर, और पसंदीदा गीत बज जाए अपने आप तो फिर क्या कहने। इस प्रोग्राम में कुछ गीत जैसे कि तराना का गीत एक अरसे के बाद वो सुन रही हैं और इसीलिए उन्हें अच्छा लग रहा है।

है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि पसंदीदा गानों को वो लगातार दिन भर सुन सकते हैं। जी हाँ, म्यूजिक एक थेरेपी है और जो हम अपने मन को प्रफुल्लित करने के लिए सुन सकते हैं हमेशा। और एक बहुत अच्छी बात है कि म्यूजिक सुनते सुनते, संगीत सुनते सुनते हम बाकी के काम भी कर सकते हैं, हमारे बाकी काम नहीं रुकते हैं बिल्कुल भी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब पंछी आकर पानी पीते हैं एक एक करके और उन्हें वो निहारते हैं, देखते हैं, तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है ये देखते हुए, और ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर हमें देख रहे हैं और ये पंछी भी कुछ बोल तो नहीं पा रहे लेकिन जरूर राहत महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि धुंध और कोहरे से भरी हुई ये पर्वत घाटियों में गूंजता ये सुंदर गीत उन्हें बहुत पसंद आया है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी मुस्कान हमारे लिए एक फायदे का सौदा होती है, इसके जरिए दुनिया जीती जा सकती है। और उन्होंने काफी साल एक डाक विभाग में गुजारे हैं, सरकारी विभाग में, और वहां पर उनकी मुस्कान उनका शस्त्र हुआ करती थी। गुस्से भरे शख्स को भी वो इस हथियार के सहारे शांत किया करते थे। और एक बार किसी ने उनके सामने पैसों का बंडल डाला डिपॉजिट करने के लिए, तो उन्होंने एक डायलॉग मार दिया एक फिल्म का कि आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूं, और वो चौंक गए और बस खिलखिला उठा सारा समाज जो था। जी हाँ बिल्कुल, तो मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ गीत हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, जैसे कि ये अगला गीत। बढ़ते हैं आगे इस प्रोग्राम में।

येसुदास की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। कैफी आजमी ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत और टूटे खिलौने फिल्म का नाम। आपको बता दें कि इसी प्रोग्राम में कुछ देर पहले जो आपने गीत सुना तराना फिल्म से, गुंचे लगे हैं कहने, शैलेंद्र सिंह की आवाज में गीत और इसे लिखा तिलक राज थापर ने और संगीत राम लक्ष्मण का। आपके संदेशों पर आते हैं और जब मुस्कुराते हुए चेहरे की बात आती है तो आपके संदेश भी मुस्कुरा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है पढ़ते वक्त। और हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आज सुरीला सफर के गीत मुझे उम्र के उस पड़ाव पर अतीत की खूबसूरत यादों में ले गए और होठों पर बरबस ही मुस्कान आ गई। धन्यवाद विविध भारती। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं कि पिछले महीने अगस्त में वो जम्मू कश्मीर बाबा अमरनाथ जी माता वैष्णो देवी गोल्डन टेम्पल अमृतसर के दर्शन करने गए थे और साथ में श्रीनगर भी घूमने गए थे और ये कहीं ना कहीं उन्हें रिफ्रेश कर गया, आनंदित कर गया। जी हाँ, घूमना बीच बीच में वक्त निकालना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सारे गाने हमारे जवानी के दिनों यानी कि कॉलेज के जमाने के सुनाए जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है और ऐसा लग रहा है मानो जवानी लौट आई है। जी हाँ, इन गीतों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराने की वजह तुम हो विविध भारती। इस परिवार यानी कि विविध भारती परिवार से जो सुकून मिलता है मानो दिल में किसी ने मरहम लगा दिया हो और गीत बजा दिया हो। जी हाँ बिल्कुल, हम चाहेंगे कि मरहम लगाने की जरूरत ना पड़े लेकिन हाँ आपके दिल को आनंदित जरूर करते रहें। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेहरे अगर हंसमुख होते हैं तो उन्हें देखते ही बस उनसे बात करने का जी चाहता है, किसी न किसी बहाने बस उनसे बात हो जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसे

हमारे साथ दिल्ली में हुआ एक ऑफिस में, और एक सेक्रेटरी थी, उन्हें देख के, उनका चेहरा देखकर अभी तक नहीं भूले हैं वो, और बस बहुत ही हंसमुख थी और उनका वो चेहरा दिल में उतर आया था। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आप अपने नूरानी चेहरे को हंसते हुए रखने के लिए, मन को झूमता हुआ रखने के लिए क्या करते हैं? इसके अलावा कौन सी आदतें हैं जो आपने अपनाई है अभी रिसेंटली, जिससे कहीं ना कहीं दिल प्रफुल्लित हो जाता है, वो जरूर लिखकर भेजिए। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: याराना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में राजेश रोशन का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही आसान थी, बहुत जल्दी उन्होंने गीतों की लिस्ट बना ली, फहरिस्त बना ली, लेकिन अभी अभी वो बस किसी काम से खाली हुए हैं, खाना खाने का काम कर रहे थे और अभी किसी और काम की तरफ बढ़ना है। जो उन्होंने लिखा है वो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि खाना खाने के बाद गीत सुनते हुए अब किसी और काम की तरफ बढ़ेंगे। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये एक घंटा यानी कि 60 मिनट वीबीएस टीम के साथ हैं, इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता लिखते हैं कि संबंध बनाना यानी कि रिश्तेदारी निभाना बहुत ही रिश्तेदार रखना होता जरूर है क्योंकि हमारे साथ रिश्तेदार जुड़े होते हैं, परिवार वाले लोग जुड़े होते हैं, लेकिन इस रिश्ते का निर्वाह करना आसान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कभी किसी को कुछ बुरा लग जाए या किसी को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसमें कहीं ना कहीं असमंजस जरूर हो जाती है क्योंकि जिंदगी में बहुत से पड़ाव आते हैं जब ऐसी चीजें होती है, तो ऐसे में बहुत समझदारी से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जीवन का नाम बैलेंस बनाकर चलना है, ये बैलेंस जो है वो जरूर रहना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे जिन्होंने कुछ पंक्तियां लिखकर भेजी है, तुम दो कदम दो साथ अगर आसान हो जाए सफर, छोड़ो भी ये दुनिया का डर, तोड़ो ना दिल इनकार से, देखो कभी तो प्यार होता है, कुछ कुछ उन्होंने लिखा है, हालांकि अच्छा लिखा है, दिल से लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। छूकर मेरे मन को, इस गीत की प्रतीक्षा कब से थी और अब जाकर ये गीत आया है, ऐसा दो से तीन श्रोताओं ने लिखा है जिन्हें इस गीत का इंतजार था, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य अकादमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकादमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हम किसी से कम नहीं फिल्म से आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ चेहरा किसी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें उस शख्स की मुस्कान सबसे अच्छी लगती है जो बिना किसी स्वार्थ छल या दिखावे के अपने दिल से मुस्कुराता है। जी हाँ, और ये मुस्कान दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान होती है। छोटे बच्चे की मुस्कान भी हमारा मन मोह लेती है और वो भी बड़ी मासूम और किसी स्वार्थ के परे होती है। बिल्कुल सच कहा आपने। बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि उनके बहुत सी गीतों की फहरिस्त पूरी हुई है और प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति से बंधी ये जो इबारत है इसमें बहुत से गीत आसान थे गेस करने बताने, लेकिन सुनने में उतना ही मजा आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि प्यार इंसान के भीतर दया धैर्य और संवेदनाशील को जगाता है जिससे वो जिंदगी को और सकारात्मक नजीरे से देखने लगते हैं। जी हाँ, सकारात्मक दृष्टिकोण होना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्यार जिंदगी का वो हसीन एहसास है जो किसी के करीब होने से ज्यादा उसके ख्याल मात्र से चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके संदेश पढ़कर इस वक्त हमारे चेहरे पर मुस्कान खिल गई है।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

फिलहाल सोच से परे ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे और इस गीत के साथ ही इजाजत चाहते हैं। आज का सुरीला सफर आप सुन रहे थे अनुराधा के संग।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: नमस्कार दोस्तों, जीवन में खुश रहना, प्रसन्न रहना, सेहत का ध्यान रखना कितना आवश्यक हो चला है। ये सब हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, फिर भी घर के व्यस्त कामकाज में स्वयं का ध्यान रखना कहीं पीछे छूट जाता है एक महिला के लिए। लेकिन ये भी याद रहे कि हम सहेलियां ही तो परिवार की धुरी है ना। खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, समय निकालिए, थोड़ा वर्जिश कीजिए और हाँ, मंगलवार के दिन हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए फोन कॉल्स कीजिए। तो बस अपनी सखियों से बात करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी इस सखी से होंगी बातें। देखिए ना, फोन की घंटी भी बज उठी है। चलिए उठाते हैं आज का पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्कार, बताइए किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम है आरती।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आरती जी?
1: मैं हैदराबाद किशनबाग गुड़ा से बात कर रही हूँ।
0: हैदराबाद से? अरे वाह, क्या हाँ। बात है। बताइए कैसी हैं आप और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: कुछ नहीं, श्रावण का महीना, वही पूजा व्रत वही चल रहे हैं।
0: हाँ हाँ।
1: और मुझे वेद भारती मतलब बहुत बचपन से मेरे नाना जी सुना करते थे पहले, उसके बाद फिर मेरे पापा मम्मी सब सुनते हैं और मेरे बहने मेरे मम्मी पापा सब सुनते हैं, समझे मेरे घर से।
0: अच्छा।
1: हमारे नाना जी को अलग अलग रेडियो लाने के शौक थे, मेरे मम्मी बताती है अलग अलग रेडियो से वो लाते रहते थे हमेशा।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है। अब ये बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: जय संतोषी माँ है फिल्म का नाम है और करती हूँ तुम्हारा व्रत में गाने का बोल है।
0: जी बहुत सुंदर,
1: आपने मेरा कॉल लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके वेद भारती से।
0: आरती जी,
1: आपने सौभाग्य है जी मुझे मिला जो आपका इसमें बात करने का।
0: आरती जी, आपने समय निकाल करके कॉल किया उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलिए, खुश हम भी बहुत हैं और इसी बात पर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सहेली आज हमसे बात कर रही है?
1: पुष्पा देवी झांसी से बोल रहे हैं।
0: झांसी से? अरे वाह पुष्पा जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी
0: जी। और क्या चल रहा है इन दिनों, और परिवार में कौन कौन है?
1: दो लड़के हैं, लड़की हैं, सास ससुर हैं, पति देव हैं।
0: अरे वाह, आप क्या करती हैं? भरा पूरा परिवार है ना?
1: हाँ, भरा पूरा परिवार है। हम फल की दुकान चलाते हैं दीदी। मैं
0: आपकी ये फल की दुकान है तो अलग अलग किस्से कहानियां भी तो मरीज के जो परिवारजन होते होंगे वहाँ पे खड़े होके बातें करते होंगे।
1: हर कोई सुनाता है, जब आते हैं हमारे फल की दुकान पे लेने के लिए तो सब कोई अच्छी सुनाता है। कोई अपने दुखी ज्यादा रहते हैं यहाँ पर, दुख मतलब
0: जी जी
1: ज्यादा वितरण करते
0: हैं। तो फिर आप क्या उन्हें कुछ प्रेरणा के दो शब्द कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, इस तरह का कुछ कहती हैं आप?
1: हाँ, भगवान जी कहते हैं कि दुआ करेंगे सब ठीक हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: टेंशन नहीं लो मतलब।
0: जी बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं जो मेरी रूह से चैन दे, प्यार दे, जिंदगी गए हो।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म कसूर का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ इंदौर से।
0: जी ज्योति जी इंदौर से, बताइए कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ
0: जी। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों? अभी तो त्योहारों के बिल्कुल मौसम जैसा आ गया है ना?
1: जी। बच्चे हैं छोटे,
0: हाँ।
1: 1 6 साल का है, 3 का है।
0: तो मतलब दिन भर व्यस्तता तो आपकी रहती ही होगी, है ना?
1: जी
0: हाँ, क्योंकि छोटे बच्चों को उनका ध्यान
1: स्कूल
0: रखना।
1: जाते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: जी
0: स्कूल जा रहे हैं तो उनका टिफिन बनाना है, फिर घर वापस आ रहे
1: जी
0: हैं तो तब भी बच्चों को कुछ ना कुछ नाश्ता, कुछ अलग अलग तरह की चीजें चाहिए होती हैं, है ना?
1: जी
0: जी।
1: हाँ,
0: तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं या घर पर ही पढ़ते हैं बाद में, स्कूल से आने के बाद?
1: ट्यूशन जाता है एक बड़ा, एक नहीं जाता छोटा।
0: जी। तो यानी कि आपको तो समय ही नहीं मिलता होगा अपने लिए।
1: हाँ बहुत कम मिलता है
0: ऐसे में फिर रेडियो किस तरह सुन पाती हैं आप?
1: जी, सुन लेते थोड़ा बहुत, ये सुनते हैं हमारे हस्बैंड।
0: जी, तो पति देव सुनते हैं और आप भी साथ में सुनती है ना?
1: जी।
0: जी। तो ज्योति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है ममता, गीत से बोले हैं रहे ना रहे हम।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: जी बताइए, किससे बात हो रही है?
1: वैष्णवी मुड़ी।
0: वैष्णवी मुड़े, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: नांदेड़ से।
0: जी वैष्णवी, बताइए नांदेड़ से कैसी हैं आप और कैसा है नांदेड़?
1: नांदेड़ तो अच्छा है, मैं भी अच्छी हूँ।
0: और बताइए क्या करती हैं आप, परिवार में कौन है?
1: परिवार में मेरा छोटा बच्चा और
0: हाँ,
1: मम्मी जी है।
0: अच्छा परिवार है, मतलब भरा
1: हाँ,
0: पूरा परिवार है।
1: जैसा है। हाँ, परिवार है।
0: और आप क्या करती हैं बताइए आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ, छोटा बेबी है 5 महीने का।
0: ओ, ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है, अभी तो आपको हर वक्त उसका ध्यान रखना पड़ता होगा।
1: हाँ,
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: ABCD मतलब गन गन गणपति वाला गाना।
0: ABCD फिल्म का, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है।
1: मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश गोंडा से।
0: उत्तर प्रदेश गोंडा से क्या बात है?
1: आज मैम मेरी पहली बार कॉल लगी है ना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ।
0: एक बात बताएं अनु जी, आपकी आवाज से ही समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, और हम भी बेहद खुश हैं कि आपने कॉल लगाने की कोशिश की। क्या करती हैं आप बताइए?
1: मैं जॉब करती हूँ और तैयारी करती हूँ रीडर के साथ मैच की।
0: जॉब कर रही हैं और तैयारी किस चीज की?
1: जिस जॉब पे हूँ ना उसी, और अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए।
0: अच्छा, तो प्रमोशन आपको मिल जाए इसके लिए आप कोशिश कर रही हैं और उसी की तैयारी कर रही हैं। जी जी
1: हाँ।
0: तो उसके लिए पढ़ाई करनी होती होगी, कैसे क्या करना होता होगा?
1: मैम उसके लिए मतलब हाँ पढ़ाई करनी पड़ती है तो वो कर लेते हैं हम।
0: तो आप देखिए जॉब भी कर रही हैं और पढ़ना भी है क्योंकि प्रमोशन चाहिए, तो कैसे समय निकालती हैं फिर पढ़ाई के लिए?
1: मैं तो पढ़ाई के लिए भी समय निकाल लेती हूँ और साथ साथ रेडियो भी सुनती रहती हूँ।

0: दिवस भारती में हमेशा सुनती रहती हूँ। यहाँ के कार्यक्रम मुझको बहुत अच्छे लगते हो। आज के फनकार हो गए, पिटारा हो गया, हेलो सहेली हो गया, बहुत सारे कार्यक्रम है जो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं।
1: अरे वाह, यानी कि आप तो एक दिन मतलब कि दिन का जो हम 12 घंटा इस्तेमाल करते हैं ना काम काज करने के लिए, उसमें तो आप कई सारे काम कर लेती हैं। जॉब भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और रेडियो भी सुन रही हैं। क्या बात है। तो हम आपको आपके प्रमोशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई अभी से देते हैं अनु पांडे जी।
0: फूलों की ताजगी, चांदनी की चमक, विविध भारती रेडियो तो है खुशियों का कमल।
1: क्या बात है।
0: और मैम हमको गाना सुनना है, फिल्म का नाम है तेरे नाम और गाने के बोल है तुमसे मिलना बातें करना। आज ना हमको आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हमें भी आपसे बात करके बहुत ज्यादा आनंद आया अनु पांडे जी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, किससे बात हो रही है?
1: निशा कुशवाहा बोल रही हूँ मैम, नीचागढ़ जिला अशोकनगर से। ठीक
0: अच्छा, बताइए निशा जी, कैसी हैं आप?
1: है, आप कैसी हो दीदी?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: दीदी ध्यानदार पिक्चर का सुनवा दीजिए, आएगा मजा बरसात का।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं, लेते हैं ये कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम है आरती डांगी है, मध्य प्रदेश जिला सागर ग्राम जमुन खमरिया से बोल रहे हैं।
0: खमरिया से बोल रही हैं आप। बताइए, जिंदगी में सब कुछ कैसा चल रहा है और कैसा चल रहा है आपका शहर?
1: जिंदगी में दीदी सब कुछ अच्छा है, शहर भी अच्छा है, लेकिन दुख सुख तो आते जाते रहते हैं। अभी हमारी माँ का डेथ हुआ है दीदी, इसलिए अधिक दुखी है।
0: जी, हम समझ सकते हैं आरती जी की माँ का ना होना, यानी ये खालीपन किसी भी चीज, कोई धन कोई पद किसी से भी पूरा नहीं किया जा सकता, है ना?
1: जी दीदी, मेरा मायका है छिंदवाड़ा जिला का और सागर का ससुराल है यहाँ का, मतलब
0: जी।
1: 250-300 किलोमीटर की दूरी है।
0: अच्छा, 300 किलोमीटर की दूरी है ससुराल और मायके के बीच में।
1: जी दीदी, हम बिल्कुल महाराष्ट्र के किनारे पे रहते हैं एकदम।
0: अच्छा, आप परिवार में कौन कौन है?
1: सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है और मेरे दो बेटा हैं, पति देव, हम सब लोग भारत पूरे परिवार से हैं।
0: आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज हम गीत सुनेंगे दीदी राजा और रंग फिल्म का, वो तो कितनी अच्छी है माँ के लिए।
0: जी, तो आपकी माँ को समर्पित ये गीत प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किसका कॉल लगा है? अपना नाम बताइए।
1: कृष्णा लोवंशी, जिला खंडवा से लगा मेरा फोन।
0: क्या बात है, आप क्या करते हैं?
1: खेती करती हूँ दीदी मैं।
0: अरे वाह, खेती का काम करती हैं। तो
1: जी जी
0: इस वक्त क्या आप खेत पर ही हैं?
1: दीदी, खेत में नहीं, घर पे हूँ और मक्का लगाई है दीदी मैंने।
0: मक्का लगाई है, तो कब तक इसकी कटाई हो जाएगी फिर?
1: ये अभी दीपावली तक होगी दीदी।
0: अच्छा, दीपावली तक।
1: मेरे दो लड़के हैं,
0: हाँ,
1: एक खेती करता है और एक लड़का बड़ा वाला मेडिकल पे है।
0: तो आप भी जाती हैं खेती करने?
1: हाँ जाती हूँ दीदी, मेरी बहू भी है,
0: हाँ
1: एक
0: हाँ तो वो भी
1: वो
0: जाती
1: भी।
0: हैं।
1: हाँ दोनों जाते हैं।
0: अरे वाह।

0: जी, ये तो बहुत मेहनत का काम है खेती करना कृष्णा जी, हमारे देश का तो आधार है किसान और खेत। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, हमें आपसे बात करके बेहद प्रसन्नता हो रही है।
1: गदर फिल्म का है दीदी, ऊर्जा काले कावा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म गदर का ये गीत।

0: मैं बोल रही हूँ द्वारका दिल्ली से।
1: दिल्ली से अनीता वर्मा जी, बताइए कैसी हैं आप?
0: जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम?
1: बिल्कुल अच्छे हैं, यहाँ पर भी सब ठीक है। और अपने बारे में बताइए अनीता जी।
0: हाँ मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ और पहले से ही मैं फोन करती रहती हूँ 2.5-3 महीने के बाद कि कभी कम नंबर लगता रहे।
1: जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने 2 महीने का पूरा जो हम अनुरोध करते हैं, आपने वो समय का पूरा शांति से इंतजार किया और 2 महीने के बाद कॉल कर रही हैं।
0: हेलो सहेली, ये विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम क्या क्या बताऊं मैं, सभी बहुत पसंद है मुझे, इन्हीं के साथ मेरा काम होता रहता है।
1: जी बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप विविध भारती के सारे कार्यक्रमों को पसंद करती हैं। रेडियो तो सुनती ही हैं और सारा दिन आप संगीतमय आपका दिन ये निकलता है। इसके अलावा और आप क्या करते हैं?
0: मैम घूमने का भी शौक है, 2-4 महीने बाद चक्कर लग ही जाता है, घूमने की बहुत शौकीन हूँ, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, सूट साड़ी ये ज्यादा मुझे पसंद आते हैं, अपने इंडियन जो
1: जी, और
0: हमारे ये कपड़े हैं।
1: जी, और दिल्ली तो प्रसिद्ध भी है ना शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए बिल्कुल यहाँ पर तरह तरह की चीजें, हर प्रकार की चीजें मिल जाती हैं और आप उसका शौक भी रखती हैं। और देखिए, एक महिला को ये सारी चीजों का शौक होना भी चाहिए, आपको क्या लगता है?
0: हाँ जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर महिला ही में शौकीन होगी तो और कौन होगा,
1: जी
0: इसी
1: हाँ
0: तरह जगते हैं और कोई तो पहन नहीं सकता ये
1: बिल्कुल
0: सारी चीजें।
1: जी,
0: जी
1: इतनी सारी चीजें होती हैं हम महिलाओं के लिए पहनने के लिए। और जब शौक मन में रहता है ना, प्रसन्नचित रहता है, तो हम घर भी बहुत अच्छे से रखते हैं, खुद को भी खूब अच्छे से सुंदर बनाते हैं। और एक प्रसन्न वातावरण जो घर का रहता है, वो हमेशा सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है अनीता जी। आज बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मुझे सुनना है पर्दे के पीछे, ये फिल्म का नाम है, गाना बहुत ही अच्छा है, तेरे बिन जिया ना लगे, आ जा रे
1: बिल्कुल, चलिए तो शायद वो आ ही जाएंगे जिसके बिना आपका जिया नहीं लग रहा है। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ, ये कौन सी सहेली है? क्या नाम है आपका? अपने बारे में बताइए।
1: मेरा नाम है शांति वारी। मैं उदयपुर वारियों की घाटी से बोल रही हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका शांति जी।
1: धन्यवाद
0: जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: जी, तो घर के काम काज में दिन भर सारा समय निकल जाता होगा, है ना?
1: हाँ, निकल जाता है ना, दिन भर 20 फैमिली है, 3 फैमिली एक साथ रहती है, रसोई एक ही है।
0: ये तो आज के जमाने में उदाहरण है आपका परिवार की, तीन परिवार एक साथ रहता है और आपने कहा रसोई भी एक ही है।
1: हाँ, एक ही है।
0: जी, बहुत ही सुंदर बात है। तो जब इतना बड़ा परिवार है शांति जी, ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं होता कि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना या कसरत करना या वर्जिश करना कहीं छूट जाता होगा?
1: नहीं, मतलब हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है। तीनों भाई एक साथ रहते हैं, काम भी एक ही है, खाना भी मिलजुल के बांट लेते हैं। सुबह बड़े वाले, बीच वाले 11 बजे बीच वाले बनाते हैं, सुबह 5 बजे का बड़े वाले बनाते हैं, शाम को मैं बनाती हूँ।
0: अच्छा, तो मिल बांट के आपने इस तरह से काम का बंटवारा कर लिया है। और अपने बारे में बताइए, और कैसे क्या सब चलता है दिन भर घर पर? परिवार इतना बड़ा है तो बच्चे भी सब होंगे,
1: है ना, बच्चे भी, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े वाले के 2 बच्चे।
0: तो ये तो ऐसा खिलखिलाता सा परिवार है ना?
1: हाँ,
0: जी,
1: और साथ में ननद भी रहती है, 27 साल हो गए ननद के साथ रहते रहते।
0: अच्छा, आपकी एक ननद भी साथ में रहती हैं।
1: हाँ,
0: शांति जी बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म है करण अर्जुन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये गाना।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर गीत है और आपका परिवार तो इस गीत पर पूरे तरह से उतर रहा है, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद, और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली से जुड़ने के लिए, वे निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहला कॉल आप ही का लग जाए। और जिन सखियों से आज हमने बात की है उनसे ये अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। तो सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सुनने वाले सभी को बता दें कि हेलो सहेली

0: और आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए अपनी सहेली दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।